0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京から
1: NHK World Japan की उर्दू सर्विस है। हमारी ये नशरियात आप शॉर्ट वेव्स, सैटेलाइट और इंटरनेट पर सुन सकते हैं। ये नशरियात पाकिस्तान में रात 9 बजे और भारत में रात 9:30 पर शॉर्ट वेव्स 9440 किलोहर्ट्ज़ पर सुनी जा सकती हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारी वेबसाइट है nhk.jp/urdu। उर्दू नशरियात का आगाज हुआ चाहता है, हमारे साथ रहिएगा।

0: कुछ उनकी सुने कुछ अपनी कहें आइए दीवान खाना में चलें।
1: ये है आपका अपना प्रोग्राम दीवान खाना। आपके मेजबान हैं खलील शिराजी, वसीमा आबेद और खदीजा शाह।
2: प्रोग्राम दीवान खाना में तमाम सामईन को आदाब। शिराजी साहब, जापान में कल बुजुर्गों की ताजीम का दिन है।
1: हाँ जी, मैंने सुना है यहाँ सन 2003 से हर साल सितंबर के तीसरे पीर को बुजुर्गों का दिन मनाया जाता है, उन्हें तोहफे भी दिए जाते हैं।
0: ये है योमे ताजीमे बुजुर्गान, जिसे जापानी जुबान में केरोनोही कहा जाता है। सामिन, दरअसल जापान में बुजुर्गों को ताजीम देने के लिए कोई 60 साल पहले इस दिन को कौमी तातील करार दिया गया था।
1: ये तो पता चल गया, लेकिन आप लोग ये बताएं ना कि आप दोनों घर में इसे कैसे मनाती हैं?
3: नहीं, मेरी अम्मी ने मना किया है घर की बात बाहर नहीं करनी।
1: तो अम्मी के लिए कोई तोहफा ले जाएं?
3: कहा ना, बाहर की बात अंदर की बात बाहर नहीं करनी।
0: अच्छा, ज्यादातर जापान में ज्यादातर बुजुर्गों को उनके कमाऊ बेटे बेटियां कोई ना कोई तोहफा देते हैं।
3: जी बिल्कुल, और जापान में उमूमी रवाज ये है कि बच्चे माँ बाप के साथ खाना खाते हैं, उनके साथ वक्त गुजारते हैं।
0: और उस दिन से पहले कई स्टोर केरोनोही कॉर्नर मखसूस कर देते हैं, जहाँ बुजुर्गों के इस्तेमाल के लिए चीजें, मसाज चेयर और घरेलू बरकी आलात वगैरह होते हैं।
1: अच्छा, तो अब मुझे आप दोनों के लिए ऐसा कोई तोहफा देना शायद पड़ेगा।
0: ढेर सारे पैसे जमा करें। वैसे एक नया और आसान रिवाज भी सुन ले। मेरी एक जापानी दोस्त ने बताया कि आजकल कई बच्चे एआई के साथ बुजुर्गों के दिन के ग्रीटिंग कार्ड्स बना लेते हैं।
3: अच्छा, साले नौ या ईद मुबारक जैसा, लेकिन इस कार्ड पर किसी तस्वीर कैसी तस्वीर बनाई जाती होगी? ईद कार्डों पर तो हिलाले ईद वगैरह होता है।
0: अरे, केरोनोही कार्ड्स पर खिजा के फूल, कोहे फूजी जैसे डिजाइन होते हैं। कोई एक खास वजह या कोई खास डिजाइन नहीं है, और जिस तरह कोई खास डिजाइन नहीं है, इसी तरह बुजुर्गी की भी कोई वाजे हजबंदी नहीं। कुछ लोग इसे दादा दादी नाना नानी का दिन समझते हैं, और कुछ का ख्याल है कि 60 या 70 साल से कहीं ज्यादा उम्र के लोगों के लिए है।
1: आप ये ना कहिएगा कि अभी हमारी उम्र ही क्या है।
3: बिल्कुल ऐसा कहें के नहीं सोचते हैं भाई। हमारे अमले की रुकन खाने को बिस्मा कहती हैं कि इस साल बुजुर्गों के लिए एहतराम का दिन कुछ खास है, क्योंकि 21 सितंबर को बुजुर्गों की ताजीम के दिन और 23 सितंबर को खिजा के एतदाले शबरोज की तातील है।
0: हाँ, वो दिन जब दिन और रात का वक्त बराबर हो जाता है। वैसे एक बात है कि 22 सितंबर को भी, 21 और 23 के दरमियान 22 सितंबर को भी हुकूमत ने छुट्टी दे दी है। उसकी वजह यह है कि जापान में अगर दो कौमी तातीलात, वीकेंड की नहीं मैं बात कर रही, दो कौमी तातीलात के दरमियान एक खाली दिन आता हो तो उस दिन भी छुट्टी होती है।
1: अच्छा, इसीलिए इस तवील तातील के लिए यहाँ लोग बहुत पुरजोश हैं।
0: हाँ, क्योंकि हफ्ते इतवार को अगर आप काम नहीं करते तो 19 से 23 सितंबर तक 5 दिन की छुट्टी है।
3: अच्छा, बिस्मा बताती हैं कि आजकल जापान में लोग 5 रोजा छुट्टियों के मंसूबों के बारे में बहुत बात करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग ईद की छुट्टियों के बारे में करते हैं।
0: जी जी जी,
1: चलिए जी, अब सामीन के पैगाम देख लेते हैं।
0: अरे, छुट्टियों के जिक्र से इतनी खुशी हो रही थी। जी, सामीन के पैगाम का आपने जिक्र किया, तो पैगाम है सिंध पाकिस्तान से हक नवाज टग्गर साहब का। लिखते हैं, प्रोग्राम दीवान खाना मेरे जैसा बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है, साथ ही उन्होंने गुलाब के फूलों का और दिल का एमोजी भेजा है।
1: अच्छा, वैसे दो फूल और एक दिल, कुछ समझ नहीं आई।
3: क्यों नहीं समझ आई भाई? देखें, एक दिल आपके लिए, दो फूल, एक मेरा, एक वसीमा का।
1: कामयामा साहब,
0: हक नवाज साहब, आइंदा हमारे प्रोड्यूसर कामयामा साहब और उनकी मुआवन का भी फूल जरूर भेजिएगा।
1: हक नवाज टगर साहब, पैगाम का और हमारी महफिल में रौनक लगाने का बेहद शुक्रिया। वाकई बिल्कुल आप जैसे खूबसूरत सामे और वैसा ही आपका प्रोग्राम।
3: उम्मीद है आइंदा मजीद तफसीली ईमेल लिखेंगे और मजीद रौनक लगाएंगे। आप जैसे सब सामईन के लिए पैगाम है कि राब्ते इस्तवार रखें, हमें फूल भेजते रहें, हम उन्हें जमा करके बड़ा سا گلدستہ بنا لیں گے۔
0: واہ، پھولوں کے ذکر سے اسٹوڈیو میں ہر طرف خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی۔ پھولوں کا ذکر ہو گیا اور اب باری آ گئی موسیقی کی۔
3: جی، آج وسیمہ کے دن، میرا مطلب ہے بزرگوں کے دن کی مناسبت سے گیت سنوائیں گے۔
1: جب آپ ایک دوسرے پر ایسے کمنٹ دیتی ہیں تو بہت اچھا ہے۔
0: تو میری بزرگ، میں تیری بزرگ۔ تو آج کے موضوع کے حوالے سے ہم نے گیت منتخب کیا ہے اچی اچی زیرو راک، یعنی 1106۔ اسے جاپانی راک بینڈ وانیما نے پیش کیا ہے۔ یہ بینڈ 2010 میں کوماموتو پریفیکچر کے تین موسیقاروں کینتا، کوشن اور فوجی نے تشکیل دیا تھا۔ اب وہ ٹوکیو میں رہتے ہیں۔ انہوں نے 2014 میں اپنا پہلا البم کین ناٹ بیہیوڈ جاری کیا تھا۔
3: 2017 میں انہوں نے این ایچ کے نئے سال کے میوزک شو کوہاکو اوتاگاسین میں پہلی بار شرکت کی۔
1: 2018 میں انہوں نے اپنا پہلا بڑا مکمل البم ایوری باڈی جاری کیا۔ 2023 میں انہوں نے اپنے آبائی شہر کوماموتو میں اپنا میوزک فیسٹیول منعقد کیا اور جاپان بھر کا ٹور بھی کیا۔
0: کینتا نے یہ گانا اچی اچی زیرو راک اپنے دادا کے لیے لکھا تھا، جو ان کے دادا کی تاریخ وفات ہے، یعنی 1106۔ کینتا کہتے ہیں انہوں نے یہ گانا اپنے دادا کو خط کے طور پہ لکھا تھا۔
3: ان کے دادا کوماموتو پریفیکچر کے ساحلی علاقے اماکوسا میں ماہی گیر تھے اور کینتا ان کے بہت قریب تھے۔ اسی تعلق کی وجہ سے ونیما نے میوزک ویڈیو کو اماکوسا میں سمندر کے کنارے فلمایا، جہاں ان کے دادا ماہی گیری کرتے تھے۔
1: بسما کہتی ہیں کہ انہوں نے یہ گانا اس لیے منتخب کیا کہ اگرچہ کینتا نے یہ گانا اپنے دادا کے لیے لکھا تھا، اس نے مجھے اپنے دادا دادی کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا۔
0: بسما کہتی ہیں یہ گانا سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیرانو ہی بزرگوں کے لیے شکر گزاری کا دن ہے اور وہ کہتی ہیں یہ گانا مجھے اپنے دادا دادی کی شکر گزاری پر مجبور کرتا ہے اور ان کے لیے کچھ خاص کرنے کی تحریک دیتا ہے۔ وانیما نے اس گیت کو اس بزرگ کے نام کیا ہے جو کہیں دور سفر پر چلے گئے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں۔